0: चटाक सरात टीटा बाया ला वन बी सी सरात तल ऑनलाइन ओसई म्याश्तनाई का सोडा स्पाइक जीबी इंटरनेट या वाजी पर सलोर सौ अफगानियो फाला ओल्ल पारा स्टोर है सलोर सौ वाविया स्टोर है पिंजर स्टोर है याव अलामत लंबर डायल करें
1: अफगानिस्तान के द फुर्जी तर टोलो चटाका औसर शबका